बिल्कुल गिरिलाज म बन्नान्यो अब्दुल्लाह उमर बाबर हिरुक या मालिक बॉय कक उरे न्याने खाला इब्राहिम अलहाजी मूसा वीते चेन इब्राहिम मूसा